0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। टोक्यो के मशरक में वाकई चिबा प्रिफेक्चर में हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड शदीद बारिश के बाद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उनका कहना है कि एक शख्स लापता है। हुक्काम के मुताबिक 130 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उनका कहना है कि ज़ेरे आब आने वाले घरों में से 1489 घरों में पानी फर्श की सतह से नीचे रहा, जबकि 1206 में फर्श की सतह से ऊपर आ गया। हुक्काम का कहना है कि बुध की दोपहर 1 बजे तक 59 अफराद बल्दियात की जानिब से नामजद करदा इनखलाई मराकज़ में मुकीम थे। ज़ेरे आब आने के बाद शहर की सड़कों पर छोड़ी गई तकरीबन 2500 गाड़ियों को मुंतकिल करने का काम जारी है। छोड़ी गई गाड़ियों से निपटने के लिए मंगल को एक प्रोजेक्ट टीम तश्कील दी गई। इसमें प्रिफेक्चर, चिबा शहर और मरकजी हुकूमत के साथ साथ गाड़ियां खींचने वाले ट्रकों की सनद के नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये टीम गाड़ियों के मालिकान की शनाख्त करेगी और इन्हें ले जाने की दरख्वास्त करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ICC के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज़ कर रही है। इसकी जानिब से सदर मोहतरमा अकाने तोमोको समेत अदालत की क़यादत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अकाने एक जापानी जज हैं जिन्होंने 2024 में ओहदा संभाला था। अमरीकी वजारत खारजा ने मंगल के रोज़ वजीर खारजा मार्को रूबियो का एक बयान जारी किया। इसमें ICC को बदउनवान और तबाहकुन हद तक सियासतज़दा करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अदालत अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। इन पाबंदियों में अमरीका में मौजूद किसी भी असासे को मुंजमद करने पर जोर दिया गया है। वजारत खारजा ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक मज़ीद कार्रवाई करने के लिए तैयार है जब तक कि ICC अमरीकी खुदमुख्तारी को मज़ीद ख़तरे में ना डाल सके। अमरीकी हुक्काम ने अदालत की जानिब से अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों के मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात की मंजूरी पर एतराज़ किया है। उन्होंने मुबैना जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत भी की है। हुकाम ने इन मुकदमात में मुलविस जजों और इस्तगासा पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ICC की जानिब से पाबंदियों पर तनकीद की गई है। इसने कहा है कि अदालत को निशाना बनाने से कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचेगा और बैनुल अक्वामी कानूनी नज्म खतरे में पड़ जाएगा। अदालत का इसरार है कि वो आज़ादाना तौर पर काम करती रहेगी। गैर मुल्की बाशिंदों को जापानी ज़ुबान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उसूलों ज़वाबित सीखने में मदद फराहम करने के एक नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जापानी हुकूमत ने मंगल के रोज़ माहरीन के एक पैनल का पहला इजलास मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिसमें लोग हमवार तरीके से जापानी मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा कर सकें। काबीना दफ्तर में गैर मुल्कियों के बारे में पॉलिसी के इंचार्ज वजीर मुमलकत सुजुकी हयातो ने कहा कि समाजी शमूलियत पर मबनी मुनज़्ज़म और जामे मुआशरे के क़याम के तनाजुर में इस प्रोग्राम का क़याम एक अहम मामला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनका हदफ एक मुअस्सर मंसूबा तरतीब देना है। ये प्रोग्राम अमूमी तौर पर दरमियानी से तवील मुद्दती रिहायशियों का अहाता करेगा। ऑनलाइन सीखने का माहौल जापान से बाहर भी दस्तयाब होगा। प्रोग्राम के मवाद और मतलूबा शुरका के साथ साथ रिहायशी हैसियत की जांच पड़ताल में नतायज की अक्कासी करने का तरीक़ाकार भी इजलास के मौजूआत में शामिल था। पैनल ने तस्दीक की कि इस प्रोग्राम को माली साल 2028 में शुरू करने के मकसद से बातचीत जारी रखी जाएगी।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।